0: कोय सुत क्यों कर किए सुत पवे रसोय। नानक सुत क्यों न उतरे ज्ञान तारे तो महला पहला।
1: मन का सुत ग्लोभ है

हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी छिन्नत बस दिन बसाज सुदामा अपदा ते रखे गंगा पर पूरे तह काज श्री सतगुरु।

सतगुरु प्रसाद उदार खासे दस्तक का पातशाही दसवीं अकाल प्रकृति हमने सर्वलोज रच हमने सर्व काज रच हमने सर्वलोज दार च हमने।

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पासे जियो। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियाँ हाजरिया बढ़ते हुए कीर्तन दे सत्कार संगता वालों बेंत माया हाजिर हुए जिस खजाने विच माया हाजिर की सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जिन वसना देह अरोगता व्यक्तनी आसा मनसा संपन्न करनी यात्रा सफली करनी।

0: मैं प्राण प्राणा करके मन करके धन करके सर्ब सो सारे परिवार करके तेरे गुणा नू गाउंदा हां तू ही सुखां दा मोर मुड है।
1: इत उत राम पूरन निरखत रिद खोर
0: गरीब नवाज मैं इधर उधर लोक परलोक विच सब ताई पूरिया होया तेनु जानदा जो तू कृपा करदा ना मेरे हिरदे विच बैठा है खोर नाम मोरी दा है एक मोरी राही हिरदे विच बैठा तू चलकारा जा मैनू दे जाना है और मेरा ऐ राज हो जाता है मैं तेनू त्याई जाना है जिद झरने की मोरी राही वेख लिए ना कोई चीज ऐ राज हो जाता है मेरे हिरदे दे पलंगे उपर बैठा है तू मैं मोरी जिया जिन्ना दर्शन तेरा करके ऐ राज पूर्ण कर लेंदा
1: संत सरन तरन नानक बिनसियो दुख कोर
0: गरीब नवाज तेरे संतां दी शरण विच जाके जड़ी तारन वाली है बिनस जांदे ने कोर दुख ले जांदी अगे शब्द आ रहा कानड़ा महला पंजवा जन को प्रभ संगे असने हो साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरा सब के हो माता गंगा जी दी चोली विच गुरु अर्जन साहब जी ने ये शब्द पाया आख्या दा जप करो बाबा बुढ़ा जी दे कोलो जाके वरदान लो तुहाडे घर दल पंजन गुर सूरमा बड जोधा बहु परे उपकारी ओ पुत पैदा होवेगा माता गंगा जी ये जप ये शब्द दा जप करदे रहे आओ प्यार दे नाल सरवण करो जी
1: कानड़ा महला पंजवा जन को प्रभ संगे असने हो
0: अरदास करिए गल विच पल्लू पा के हे प्रभु गुरु नानक देव जी हे गुरु गोबिंद सिंह जी असी तेरे जन सेवक तेरे चरणा दे संगे नाल साडा असनेहो प्यार है तेरे चरणा तो बिना सानू लभदा ही कोई होर नहीं किसी कोई कोई मंझ न मानी एक तू दुनिया विच किसे नू किसे दा आसरा हो।

पंचम हरख दिसाख सुनाव है, बंगालम मध माधव गाव है, ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पहात, अष्टपुत्र पहराव के गाव है गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक अलाप है, संग रागनी पांचो थाप है, गोण करी अर देव गंधा।

दी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कांदरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब

जाए दोहरा ऐसे चन प्रताप के दीवन उड़ियो प्रताप तीन लोग जय जय करे रे नाम सब जाप दोहरा सरल द्वार को छाड़ के गह तुहार उदार पाई गई की लाज अस गोविंद दास तुहार दोहरा राज करेगा खालसा की रहना कोई ख्वार हो सब मिलेंगे बचे शरण जो हो उड़की सभा मलेच की कड़ कूड़ा पासार डंका बाजा फतेह का नंग लंका उतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भक्ते स्वयं सर्वदास सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अंग विभूते तेग तेग गोपी सिंह श्री अकाल सहाय दरबार में तेरो दरबार सचखंड संत निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबार।

जी गुरु गरीब निवाज यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दी हाजरियां भरदे गुरु कीआं संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार करदे बेअंत मैं अरदास कराईए पातशाह सतगुरु आप जी नाम जन कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी।

आगा लिखारी के दस्तका तो प्रसा चौपई प्रणवो आदि कंकारा जलथल महियल की ओपसारा आद परख अवगत अविनाशी लोग चतर द ज्योत प्रकाशी हस्त कीट के बीच समाना राव रंग जय इक्सर जाना अदवै अलख पुरख अभगामी सब घट घट के अंतर जामी अलख रूप अक्षय अनभेखा राग रंग जह रूप न रेखा बरन चयन सब हुते न्यारा आद पुरख अदवै अभिकारा बरन चयन जय जात न पाता सत्र मित्र जय तात न माता सबते दूर सबंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनाहद बानी चरण शरण जय बसत भवानी ब्रह्मा विषद अंत नहीं पायो नेत नेत मुकुचार बतायो कोट इंद्र उपेंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए लोग चतर

गंधर्व जाचे रचे सो बचारा भूत भवक भवान कहानी घट घट के पट पट की जानी तात माज जात न पाता एक रंग का हूँ नहीं राता सर्व ज्योत के बीच समाना सब हूँ सर्व ठौर पहचाना काल रहत अनकाल स्वरूपा अलख पुरख अवगत अवधूता जात पात चेहना बरना अवगत देव अक्षय अनभरमा सबको काल सबन को करता रोग शोक दोकन को हरता एक चेत जह एक छिन ध्यायो काल फांस के बीच न आयो तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो कत हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो कत हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी कहूँ माँ दान हो के मांगो धन देत हो कहूँ माँ राजन को दीजत अनंदान कहूँ माँ राजन सीन शेत लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जज गंधर्व रख कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ होय के हिंदू आ गायत्री को पद जपे हो कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो कहूँ कोब काव होय के पुराण को पढ़त मत कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद विषि कहूँ इंद्र पद विषि पाए छीन लेत हो कतहूँ बिचारा बिचारत को बिचारत हो कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत हारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देव बानी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर कामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो कतहूँ सिपाही हो के सादत सिलाहन का कहूँ क्षत्रिय के अरे मारत मारत हो कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो कतहूँ पयुग हो के पीवत पीवावत हो कतहूँ मयुग कहूँ मदपान हो कहूँ मासुर हो के मारत मवासन को कहूँ माँ देव देवतान के समान हो कहूँ माँ दीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पौन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्र धारी कहूँ छाला धरे छैल भारी कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादान हो के निर्दोखी निरंकार हो निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूपो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया खिदो मानी महामान हो विद्या के विचारों

प्रसाद सबये श्रावक शुद्ध समुसे धन के देख फिर घर जोग जति के सूर सुंदर धन शुद्ध शुद्धाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहो मत को ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जड़ संग अनुपतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गान को जात निवारे भारी भुजान के भू भवली वेदनावशीष न जात विचारे एते भय तो कहाँ भय भूपद अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देर दिशान को बाजा ढोल मृदंग नकारे गुंजत गुड़ का जान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भवेक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहन दया दम दान सो संजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान जमा सबान के पेख है पौन हार जति जंधार सब सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुपा दुरंत सास ना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर परपद भंग हले न हलेंगे तोर रीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचार सार की थार बछैया तोर दे मलिन मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनी निशाचर भूत भविक भगवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप छपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय धुन पापन के बुंज खपेंगे सा समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधिम जौंत्र लोक को राज करेंगे कोट स्नान का जातिक दान एक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म ऐसर विषण सचिव अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दोलोचन मूंद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो हाथ भ्रिय लिए सा समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहा सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तेन ही प्रभ पायो काहू ल पाहन पूज धर्यो सिर काहू ल लिंग करे लटकायो काहू लखे हरावाची दिशा में काहू पछा को सिनिवायो को उपतान को पूजत है बस को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभेज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापियो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार बकत बेअंत अनभेज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आद कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र शुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप।

का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहूं जोग भेष उदास कहूं नीवली करम करंत कहूं पौन हार दुरंत कहूं तीरा दान पार कहूं जग करम उदार कहूं अगन होत्र अनूप कहूं न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र सिमृत रीत कहूं वेद सिंह विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूं करा जल में जाप कहूं सह तन प्रताप कहूं बाद बने करंत कहूं ताप तनह सहंत कहूं गृहस्थ धर्म अपार कहूं राज रीत उदार कहूं रोग रहत अभरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं शेख ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंग राजकुमार कहूं वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उचरंत बैरा कहूं संन्यास कहूं फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नहफल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरी थले हरी उरे हरी बने हरी गिरे हरी गुफे हरी छिते हरी नबे हरी इहा हरी उहा हरी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरिया भेक हरिया दोख हरिया द्वैक हरी अकाल हरिया पाल हरिया छेद हरिया भेद हरी अजंत्र हरिया मंत्र हरी सो तेज हरिया तंत्र हरी अजात हरिया पात हरिया मित्र हरिया मात हरी अरोग हरिया शोक हरिया भर्म हरिया कर्म हरी अजय हरिया भय हरिया भेद हरिया छेद हरी अखंड हरिया भंड हरिया दंड हरी प्रचंड हरी अतेव हरिया भेव हरिया जेव हरिया छेव हरी भजो हरी थपो हरी तपो हरी जपो हरी जलस्तुई थलस्तुई नदीस्तुई नदस्तुई वृक्षस्तुई पतस्तुई छितस्तुई ऊर्धस्तुई भजस्तुअंग भजस्तुअंग रटस्तुअंग ठटस्तुअंग जिमी तुही जमा तुही मकी तुही मका तुही अभू तुही अभय तुही अछू तुही अछय तुही जतस्तुही व्रतस्तुही गतस्तु

कमाले गा खू कमाले हारी गाज गद हा बिभू दारी गिदवा मसान बास करोई करत है। घुगू मंड वासी लगे डोलन उदा सिमरग तरवर सदी मोन सदे मरत है। बिंद के सदया हीज की बडैया देज बंदरा सदी उपाय नंगे फिरत है। अंगन अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कह तरत है। भूत बने जारी ठे छौना सबे दूधा धारी पान के हरी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गबुअन के जैया ब्रेक भैया मानियत है। नव के उडैया ताए पंछी की बडैया दे बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के भसैया ताए भूचरी के जैया कहे नब के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भछैया ताए बांदरी के जैया कहे आदेश फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भछैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया तय कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मज तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन चारी रिखी के नाम के महंत लही अत है। माधव भवर और अटेरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूध कही अत है। मूढ़ रूढ़ पीटत न गुड़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रही अत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल मरी साल सदा प्रत पाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्या देह पैसा हत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहत है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद भेद अकतेब नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ओई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपज तेज इंद्र सो नाराजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनद को महर्षि तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्ण के ते वेद पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोन्दी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते कालबद भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गनेना पर देते भूमि ते हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसलो चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरते बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही बहुत दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करते है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूमंत भूम में मिलते है। सेज दे करे अनेक तोपची कपड़ भेष पोषती अनेक दानी बाबत है शीश का। कहा भयो मल जपे काटते अनेक दंड सोतो न डंडावत अष्टांग अथतीस का। कहा भयो रोगी जपे डारे रहे उर्दमो को मंद ते ना मुन्ने हरायो आदिश का। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश का। शीश पटकत जाके कान में खजूरा दसे मूंड छंट कत मित्र पुत्रों के शोक सा। आग को चरैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरों न भोग सा। कहा भयो भेड़ जो घसा सिर वृक्षण सा माटी को भछैया बोल पूछ ली जय जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भू श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठौर बात करे काग और चील दे देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजे लीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे स्वांगी कहूँ जोगिया बैरागी बने कबू सन्यास भेद बन कर दिखाबई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंड धारियों के लोगन भ्रमावई।
कामना अधीन परियो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पांच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर गदहा अनेकदा पुकार ही। कहा भयो जो पै कलवत्र लियो कांसी भी ची ची चोर ठाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ो जन गंग दार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मोर्ण ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहते जो पे पाइये अतापना तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए थे जो पे पाइये था जाप दे पूतना सदी तू ही उच्चरत है। नभ के उड़े थे जो पे नारायण पाइया था अनल काज पंछी डोल बो करत है। आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंग ना तरत है। को भयो मुंडे या सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अन मानबो। हिंदू तुरा को रावजी माम सापी मानस की जा सब एक पहचानबो। करता करीम सोई राजा कराइम ओई दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। देहुरा मसी सोई पूजा निवाज ओई मानस सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है। देवता देव जाच गंधर्व तुरग हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक दे एक बान खाग बात आता सो आपको रलाओ है। अल्लाह भेग सोई पुराना कुरान वही एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे आग ते कन्म का खोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत धूर के कन्म का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नते तरंग कोट उपजते पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपर सब ताही में समाहेंगे। केते काछ माज केते उनको करत भाच केते अच्छ वच हुए सपच उड़ जाएंगे। केते न बीज अज पच को करेंगे भाच केतक प्रत्यक्ष हुए पचाए खाए।

रूपंगना रेखंगना मोहंगना क्रोहंगना द्रोहंगना द्वैखंग न कर्मंगना भरमंगना जनमंगना जातंगना मित्रंगना सतरंगना पितरंगना मातंग न नेहंगना गेहंगना कामंगना धामंगना पुत्रंगना मित्रंगना सतरंगना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी सरूपंग सदा

अगादंग स्वरूपे अखंडत प्रतावाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे न रायंग न रंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अचयादोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवं सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अक्षय अदिक्ते अथापे विभुक्तंग अक्षय अदक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न सर्मंग न साके न परमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाजता में कहूं अक्षर के पक्षर के से साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपंग कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपंग कहूं ने गृहंग कहूं देह दोखंग कहूं औषधि रोग के शोक शोकंग कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतंग कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ की पृष्ठ की रेष्ठ पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम

आचार चित्रंग स्वरूप कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ सो दशे कहूँ ब्रह्म धर्म कहूँ वृद अवस्था कहूँ बाल कर्म कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रह देहं कहूँ ने देहं कहूँ त्याग रेहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजन कहूँ राज रीतंग कहूँ पूरण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतंग कहूँ आर भी तोर की पारसी हो कहूँ पहल भी पस्त भी संस्कृति हो कहूँ देद भाग्या कहूँ देववानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतंग कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बिन विद्या कहूँ गान गीतंग कहूँ मलेज भाग्या कहूँ वेद रीतंग कहूँ नृत विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारू गुड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछे दी अछे आद अद्व विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तु अस्तंग अभूते सौ प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यक्त तेजन भाव प्रकाश अच्छा सर्वद्व अनाश अन तुट तेजन खुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकाश।

अनभूते जन छिज गाज करता सदी हरता सना आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मार जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने ब्योलबान जय जात पार नहीं सत्र मित्र जय ने गे ने चैन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम फेक जय करम भरम नहीं जात पार नहीं ने गे ने पित्र मात जय नाम थाम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र साल जय त्रास बार नहीं दे ना जय आद अंत नहीं रूप राज जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत ने उचरंत वेद जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप जोग साधन दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तदप पावत न पार कई उर्ध बादेशन ब्रह्मांड कई उर्ध मद पावक झुलंत कई सिमरन शास्त्र उचरंत वेद कई कोप काल कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोल मृत को आहार कई करत साग पे पत्र भक्ष नहीं तदप दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जगत आदि कर्म कहूं अगन होत्र कहूं तीरा धर्म कई देह देह भाकार अटंत कई देह देह विद्या पढ़ंत कई करंत भांत भांतन विचार नहीं नायक ताज पायत न पार कई तीरा तीरा भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदव ताज पायत न पार कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म कई सिमरे शास्त्र उचरा सो कर्म निवली आद कर्म कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मक्को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं करत जक्ष गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमरेत उच्चार कही भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गे वाद कई भ्रमर दे देसन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदा तास पायत न अंत कई करत कोड विद्या विचार नहीं तदव देश देखे मुरार बिन भकत सकत नहीं परद पान भव करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पो जुगण जू जवंग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तप ताप सर्व जलेरु धलंग धन इचरत इंद्र कुमेर बलंग अन खेद स्वरूप अभेद अभियंग अन खंड अभूत छेद अछियंग अन काल अपाल दियाल सुवंग जय ठटिया मेरा काज भुवंग अन खंड मंड प्रचंड नरंग जय रचंग देव अदेव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग श्रम कीन मका जय रागना रूपना रेख रुखंग जय तापना सापना शोक सुखंग जय रोगना शोकना भोग भुवंग जय खेदना भेदना छेद छयंग जय जातना पातना मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैखना दागना दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो दशार करी नौ खंड सचियो रस्तामस तेज अतेज की अनुभव पदा प्रचंड लियो श्रिय सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्रिय जाच गंधर फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग रचे रच अंडा सेतज उद भुजंग किय देव अदेव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुतंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भोंग जय जम्पे किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांत गण भव भूत भवक भवान तुवंग जय अंडज सेत जेर रजन भूम काज पताल चलंग रज पावक पान प्रचंड वली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा का निवास हितंग रच रोज कादा चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सा दीप दई जय पाव पान प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोग चतर दचार रचे नर गंधर देव अधेव सचे अन धूत अभूत अछूत मदंग अन गाद अभ्याद

अगंज आद देव है भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त वृद्ध दा सदीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अच्छे तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अधोक दाक दग है भूता भ्रम भेक है न तात्मात जात है न पाच्य न भरण है अधेक है अधेक असेक भेक है सदीव विश्व भरण है विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के बिख सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेक नाथ जानिए सदीव सर्व ठार में अभिषेक अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आ देव है कहो सुख सपाइय जिमी जमान के बिक समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न गाढ़ बाट होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन अमकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोक है न दाग है न द्वैक है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाको कुमार है न नेह है न गे है न देव को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेक है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेक है न कर्म है न धर्म है जन्म है अभेक है न तात है न मात है ख्याल खंड रूप है छेद है भेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैक है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है भंज है भर्म है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलि अरूप राग रंग है न द्वैक है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चैन वर्ण है बेअंत है अनंत है अनंत तेज जानिए भूम अभिज है सदा अच्छे तेज मानिए न आद है न ब्याद अगाध रूप लेखी है अधोग है अदाग है अच्छे प्रताप पेखी है न कर्म में न भरम में न धर्म को प्रभाव है न

अभाव है, ना छल है, ना छिद्र है, ना छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, गंजसी विभूत है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ मोह कार है, ना आद है, ना गाद है, ना व्याध को विचार है, ना राग रंग रूप है, ना रूप राग रार है, ना रंग राग रूप है, ना रूप रेख रार है, ना हाव है, ना भाव है, ना दाव को प्रकार है, गजाधपिव है सदा अगस्त गजाधपी नराधपी करण सेव है सदा, सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आत जे बड़े तपस्पति विशेखी है, बेंद बेंद बेंद को करंत पाठ पेखी है, अगाध आद योगिया नाद बात मानी है, ना जात पात्र मंत्र मित्र शत्रु सने जानी है, सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह दे के आनंद भांत सोद है, तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन, आदनाद अगाध वृक्ष धर्म करम प्रवीण, जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आत प्रग पार, हस कीट बिखे बसे सर्व ठौर में निर्धार, जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर बिके रम्यो जय चक्र चैन न चित्र, आदे उदार मृत अगार नाद अनंत, आदंत न जानी अभिखा देव दुरंत, देव हेव न जाने जय मरम वेद कतेब, सनक औसन केश नंदन पावई न हसेब, जच किन्नर मच्छ मानद मुर्ग उर्ग पार, नेद नेद पुकार ही सि सकर मुख चार, सर्व सपत पतार के तर जाप ही जय जाप, आदे अगाद तेज अनाद मृद ताप, जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ढार रहो विराज राज राज प्रवीण, जाच गंद्र देव दानो न भ्रम क्षत्रिय माहे, वैष्णव के बिखे विराजे सूत्र भी व नाहे, गुड़ गौण न भील भीकर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द न भूम काश अनूप, जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म हीन, तीर जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन, सर्व सपत पतार के तर जानिया जय ज्योत, शेष नाम सहस फन नेद पूरन होत, सोध हटे समय सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्ब, पड़त पड़त थके महाकवि गड़त गाढ़ अनंत, हार हार कहो सब मिल नाम नाम दुरंत, भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब, देव दानो मूढ़ मानो जछ न जाने जेब, भूत भव भवान भूपद आदनाद नाथ, अगन पाय जले थले में सर्व ठौर निवास, दे गे ने सने अभे नाद अजीत, सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत, सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल अभेक, चक्र चैन बरन जागो जात पात न भेख, रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रतपाल, दीन बंद आल स्वामी आदेव पाल, दीन बंद प्रवीण श्रीपत सर्व को करतार, बरन चैन चक्र जाको चक्र चैन अकार, जात पात न गोत्र गाथा रूप रेखना बरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूको भरन, दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरक प्रमाथ, दुष्ट हरता श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ, भूत भव भवेक भवान प्रमाण देव अगंज, आदंत ना श्रीपद परम पुरक अभंज, धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार, देव अदेव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार, भूम का जले थले में मानिय जय नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद, मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद, अगौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरण पुष्ट करणंग सर्व के प्रतपाल, सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाम, सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन, सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हरता विश्व भरता आद्रुप अपार, दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड, भूम का जले थले में जप जाम अमंड, श्रेष्ठ चार विचार देते जानिए सब विचार, आदेव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार, अन्न दाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र, जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावे इसे रुद्र मुख चार,
कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सन सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत फे मुगचार आद अंत न मध जागो भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइय तय पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्चर अपार सो सो थके मास

आत्मा स्वरूप है कहा श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब का मरण है कवन सुर कह नरक, को सुगुणा को मूर्ता कहा तर्क अतर्क दोहरा। को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म, कवन जो को भोग है कवन कर्म अपकर्म दोहरा। कहो सो सम का सो कह दम को कहा कहंत, को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा। कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को, रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा। कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार, कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहा कर्म को कर्म है कहा भरम को नास, कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान अज्ञान को, रोगी सोगी कवन कहाँ धर्म की हान दोहरा। को सूरा सुंदर कवन कहाँ जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। तो प्रसाद दीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दोष्ट निकंदन आदि प्रत्ये चतुरासुर मारण पते दुसारण नरक निवारण गुड़ गते अच्छा खंडे तेर प्रचंडे खंड डंडे लखमते जय जय हुसी मै का असुर मर्दन राम कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दोष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विध्वंसन मैक मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण उर्दे जय जय हुसी मै का सुन मर्दन रंभ कपर्दन आवृते डावरु डवंके बवर बवंके भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके असी झमके फुंग फनंग जय जय हुसी मै का सुन मर्दन रंभ कपर्दन दय जिणंग चंडासुर चंडन मुंड बिमंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणी फुंकारण जो जिते सरदार विपरखन दोष प्रकरखन पुष्प प्रहरखन दोष मते जय जय होसी मय का सुर मर्दन भूम का तल उधे दामनी प्रहासन सुछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुर आचन ज्वल प्रमाचन निर्दय नराचन धर्म वृते सुरोणता चिंती अनल बेंती जो जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मय का सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सत प्रहारण साध मते सैती स्नान अष्ट प्रबान बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हुसी मय का सुर मर्दन भूम का पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धूम दुकारन द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग मय जोग जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हुसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगुरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे स्वद सनाये अगमता एक वृते जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आद कुमारक आद वृते सुर नर मुन बंदन दोष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुन नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठार निवासन पाए पताल काश अनले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तुन तबे दुग दोग दहंती ज्वाल जयंती आदन आद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तरंगण तेज सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम थे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोच विचोचन कौज कसे दामित प्रहासे सुखसरनासे सुभृत सुभासे दोष ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मै का सुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धंग घंट का विराजे रुणजुण भाजे भ्रम बाजे सुन सुरंग कोकल सुन ला जय किलवे के भाजे सुख उपराजे मद उरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन रिज्जे सबे न पज्जे रो रणंग जय जय हुसी मै का सुन मर्दन चंड चकर्दन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दोष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रज्वंसन जाग विध्वंसन शुद्ध मते
जालपा जयंती सत्र बथंती दोष प्रदाहन गाड़ मते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आज उगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदरंगी अगाद गते बृढ़ लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पद उदहारण दोष निवारण दोग हरे जय जय हुसी मय का सुन मर्दन विश्व विदंशन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाद बाण बोल निवाहन संत पनाहण गुड़ गते जय जय हुसी मै का सुन मर्दन आद अनाद गाद वृते दुग दो ब्रवक्षण सेवक रक्षण संत प्रत्यक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाए दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आदंते जय जय हुसी मै का सुन मर्दन साध प्रदन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहली जो जतीली तुन मते अष्टाय चमकन शस्त्र झमकन दामिन दमकन आद वृते डुग डुगी दमंके बाघ पवंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पते दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति धारे मुंड मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन धूम्र बधंसन आद कथे रक्तासुन मर्दन चंड चकरदन दान अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धर्म धुजे धूमराज विध्वंसन सोलो चंसुन सोम निपार निसोम मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनिल अगाद कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जदब अभूत अन भय अनंत कहो तो कहो जथा मत्रैण तंत करता करीम का दर कृपाल अद्वै अभूत अन भय दयाल दाता दुरंग दोग दोग रह जा नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सवार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंता है कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सेवंत कई पलर सूरज सिरदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अन छिज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंग अद्वै अनार सब रोग सब रोग सोगते रहते सब रोग सोगते रहत रूपन भय।

तो प्रसाद कपित अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धारे के छलैया मा सतरन के साल है दान के दिवैया मेहमान के बटैया उसान के दिवैया कटैया जम जाल है युद्ध के जितया विरुद्ध के मिटैया मा बुद्ध के दिवैया मेहमान हुके मान है ज्ञान हुके दाता मा बुद्धता के दाता देव काल हुके काल मा काल हुके काल है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमल देवे गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोगी साधे पौन साधना किते बादे अरब के अरब राज तेरे नाम है फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरहटा मंगले तेरी मनसो तपस्या करे दड़बे तलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रो के रोहले मांग देश के मंगले वीर बंग सी बुंदेले पाप पंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शेष नी आवे ते पति ध्याय दो देह का दलत है जीने तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरे दान वान को मैद गंग दान को अभेद कहियत है रंग में रंगीन राव रूप में प्रवीण और काम पे न दीन साध अधीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदारे अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे छिंडी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुकुचार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते सस राशि किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जज कहियत है करते है विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार न पारावार पाइय न पार अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मा रूपों के राशि अनासी कह के मानी है जंत्र हुना जाजा की भाव हुना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा के अनमानी है तेज हुको तंत्र के राशि को जंत्र के मोनी को मंत्र निजंत्र कह के जानी है तेज हुको तर के राशि को सर के शुद्धता को घर के शुद्धता की सार है कामरा की खाने के साधना की सान है वृक्ता की बाने के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप के भूपन को भूप के रूपों को रूप कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारे के साधन को रक्षक के गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभते के क्रोध को अभूत के अक्षय विनाशी है काम को खनिंदा के खूबी को दिखिंदा है गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल के सतरन के साल के मित्रन को उपगत वृद्धता की बासी है जोग हूं को जंत्र के तेज हूं को तंत्र के मोनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को बास के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचाए मान को दिवैया जम जाल को कटे कामना को कर है तेज को प्रचंड है खंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के अवधा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये ना पार पारा बार हुको पार जागो कीजल विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हलबी दावे पूर पीना पार पावे आसा ते अनास है देवन को देव मा देव हुक देव है निरंजन अभेवनाद अभिनवनासी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन के देव मा देव हुक देवनाद भूम के मुझैया महा मुहैया मा बाल के राजन के राजा मा साज हुके साजा महाजोग हुको जोग है धरैया द्रम छाल के कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा व छात कैसी छतरा ने छपा कैसी छप कालिंद्र के कुल के हंस निशी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली साधो सेंध रूल के परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोर चांदी सी जांदागढ़ कीरती हरी मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोईयत है हिम्मा सी हिमालय हर हाव सी हल्ला बानेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार कांसी बिलंदावा कीरति हरि की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दोरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है भखरी गंधारी गोर गखरी कर देदाचारी पान के हरि तेरो नाम ध्यायत है पूरा पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र तिथे अतापी नाथ कीरत तिहारी को ना पा

अच्छा स्वरूप अभ्यक्त नाद आजान भाव सर्वा प्रमा जाता महीब बंतन प्रफुल्ल शोभा बसन जाता प्रडुल बंतन दुरंत खग मृग महान जाता प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लत मोर सुर ढुर जान मन मत चार कुजरत कमाल राजक रहीम करुणा निधान कामल करीम जाता बिलो ताता प्रसो आजान बामी तोज मोह रोसंग विरत करुणा निधान।

दयाल मनोनाविसारयन साध जनक संग भव जल तारयन साकत नंदक दुष्ट खिन माहे पिदारयन ते साहिब की टेक नानक मन माहे जे सिमरस।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती।